0: कितना सुंदर, कितना मनमोहक।
1: ऐसा करते हैं, दोनों मिलकर शांत वातावरण में विचरण करते हैं। अरे देख।

जागो, अरे जागो, अरे जागो सोने वाले वरवधू, इतनी जल्दी निद्रा में तल्लीन हो गए, जागे।

0: मुस्कर आएंगे हम।
1: अरे अरे अरे ये क्या हो गया, हम कहां से कहां आ गए। शास्त्रीय संगीत गवैये अनूप शंकर की धोती लपेट कर कव्वाल मरम्मत खां ब्रदर्स का चूड़ीदार पजामा कैसे पहन लिया। अल्लाह प्रलय प्रलय। अरे शंख बजाओ।